अंदर जामी सच पातशाह जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, आप जी के पावन स्थान सतखंड दरबार दाजरी भरते हुए आप जिक्र भी बाणी में सत्कार करते हुए बेअंत गुरमुखा प्यारों वालों शुभ भेट माया हाजिर हुई है। सच्चे पातशाह नाम दान सिखी दान की बख्शिश करने गुरु सिखी जीवन बख्शना देता समूह संगता ने मनोकामना पूर्ण करने नाम बाणी नाल प्यार उठना दरिद्र प्रवान करने यात्रा सफल।

मन प्रीत कौर जी 1000 रुपया आदर कर दे, दीर्घ आयु दे, अरोगता बख्शनी। परमिंदर सिंह ते गुर अर्श प्रीत कौर जी व्याह दे कारण निर्विघ्नता सात रात होण लई बेनती कर दे, पातशाह कृपा करनी, कारज रास करने।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पहरव करही पंच राग नि संग।

चार छेद छाना सब दूता सारी पौन के हरी सो भुजंग जानियत है त्रिण के भजैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नब के उड़ैया ताहे पंछी की बढ़ैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पे बखानी ना है ऐसा न प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूच रीग जैया कह नब के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बसैया ताहे बांध रीग जैया कह आदिस फिरैया ते तो भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भछैया सोच गोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि।

बिनात गोजर गोपाल सब थे नजारी देखी केस नाम के महंत लहियत है। माधव भंवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीट तन्ना गूढ़ता गोभेद पावे पूज तन्ना ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल पैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जंडा थारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास

वेद वेद अंग देव नेत नेत गय कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे वही करत है। चंद्रमात शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से न वेद चालीसा नत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल मास के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्ण के वेद और पुराण के सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मौन दी मदार के ते अश्वनि कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भय है। वीर और पिकांबर के ते गण न परत हित भूमि हित के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र एक छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के तरफ को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम आद भूम में बिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट भेष भोजती अनेक दानि बावत है। शीस को कह भयो मल्ल जो पिकाढ़त अनेक दंड सोतन डंडौत अस डांग अथ तीस को कह भयो रुग जो पेडार्य रहियो उर्ध मुख मन तेरा मुंड ने होरायो आदीस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना भीन कैसे पावे जगदीस को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धसे मुंड चट कत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आख को चरैया फल फूल को फचैया सादा बान को ब्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस बृछन सो माटी को मछैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना धीर काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भेटे पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पां भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक सांगी कहूँ जोगी या बैरागी बने गब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना दीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंजर गद अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोरटा गुठार सो मार ही कहा भयो फांसी डार बुढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना भी निकस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जो पे पाय जाप देव भूतना सदेव तुही उचरत है। नभ के उड़े तो जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बासी क्यों भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी।

अहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वेखं न कर्मं न फर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं अलेखं अभेखं अजोनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धरूपं।

ग्रहं कहूं देह दुखं कहूं औखदि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं वरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज

मित्र नहीं जन्म जात जेह पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जेह करम भरम नहीं धर्म ध्यान जेह नेह गेह नहीं प्योत बान जेह जात पात नहीं शत्रु मित्र जेह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म जात नहीं भरम भेख जेह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जेह नाम थाम नहीं वर्ग व्याध जेह रोग शोक नहीं शत्रु साध जेह त्रास वास नहीं देह नाश जेह आद अंत नहीं रूप रास जेह रोग शोक नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल ब्याल कट्यो रंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जेह नेत नेत उजरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेब जेह अलख रूप वासन अडोल जेह अमित तेज अक्षय अतोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन।

कई तीरथ तीरथ भर मत्सो भरम गई अगन होत्र कई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तब दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम गई सिमृत सहसरत उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार गई भजत।

जय जम्पह जुगण जूह जुवंग भय कंपह वीर पयाल भोंग तप तापस सर्प जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूत छेद छयंगन काल अपाल दयाल सुवंग जे ठट्यंग मीर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव वरंग सबकी नी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात वितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करे नव खंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधुरु बिंद नगेंद नगंग श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेत ज्योत भुजंग किये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातन पातन ज्योत जुतंग जय तातन मातन भ्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुवंग जय जम्पह किन्नर जच जुवंग नर नारण पुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर थादक बांध गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बनी वन जास कियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत अभूत अछूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम्पत वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सुत सिंध अधो मुख ताप तपै कई गल्पन लो तब ताप करै नहीं नह कृपा निध पान परै जय फोकट धरम सभै तज है एक चित्त कृपा निध को जब है ते या भव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट वृत्ति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के रस है त्यो

भंज जानिए भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेघ शेघ भेक है सदीव विश्ववरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेघ विश्ववरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अदवेख है अभेघ है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेघ आन मानिय दजंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान नेत नेत के बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आदि देव है कहो सुख सिपाहिये जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन और मकान अप्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न नेह है न गे है न देह को बनाओ है न चल है न छिद्र है न चल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है।

सन गाव सन केस नंदन पावही न हसेब जाछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र औमुखचार सर्व सपत पतार के दर्जा पही जह जाप आद देवा गात तेजा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज राज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णंग के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्ध न भूमा काश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फरण नेत पूरण होत सोत सोत हटे सफा सुर विरोध दानव सरप गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त सके महाकव गढ़त गाड़ अनंत हार हार कहियो सभो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेव देव दानो मूढ़ मानो जच न जाने जेब भूत भव भवान भूपत आदनाथ अनाथ अकन पाय चले थले।

चक्र चिहरना वर्ण जा को जात पात न भेख रूप रेख न रंग जा को राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व खायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आदि देवपाल दीन बंध प्रवीण श्रीवत सर्व को करतार वर्ण चिहरना चक्र जा को

देव देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूम का जले थले मेहमानिये जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकांद अघाव दंडन दुष्ट खंडन काल हो के काल दुष्ट हरन पुष्ट कर

गाय थके सब गुण चक्रत फे मुखचार आद अंत न मध जा को भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीय कल जग जत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोध सोध थके महासुर पायो नह पार। त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन। दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है

असुर भ्यंडन दुष्ट निकंदन आदवृत्ते चरा असुर मारण पति दोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अछे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मै खा सुर मारदन रमक बरदन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदुंसन महक मथे दान प्रहारन नरक निवारण अदम उधारण उर्ध अधे जय जय हो सी मै खा सुर मर्दन रम्भक बर्दन आदवृते डावरू डवंके पुपर बवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायद चमके भूखण दमके अत सिद्ध झमके फुंक फनंग जय जय हो सी मै खा सुर मर्दन रम्मक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंडे अखंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फुरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथी जय जय हो सी मै खा सुर मर्दन भूमा कासल उर्ध अधे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गति

सुन मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोक निवारण दुष प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियन फुंकारण बाघ पकारण सत्य प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चा चर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विवर्तन्ते जोग जयंती मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे घुंगुरुघ मंकण सहस्र झमकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृत्ति जय जय हो सी मै खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृत्ति सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृथ मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकर खंड धुंध तवे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो सी शास्त्र प्रकर खण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच बिसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरणासे सुभ्र सुवासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मै खासुर मर्दन आद अनाद अगाधूर्धंग कंटका बिराजे रुण झुण बाजे ब्रम्ब बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिख बाजे सुखो बराजे मध उरंग

दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर विदे धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल वाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी माखासुर मर्दन आदि जुगाद अगाध गति खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गते वृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृत्ति सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी माखासुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे ओंतरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट

प्रणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धरम जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल। उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग नूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निषिद नुचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख तहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये। दीनन की प्रतपाल कर नित संत उबार कनी मन गारे पछ पशु नक नाक नराधिप सर्व समय सब को प्रतपार। पोखत है जल मैथल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार। दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार। पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रूख रुहान की रोजी नटार। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख बनाए देव देव खपे अहंग बेव न भेव लख्यो भ्रमस्यो भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों गिन श्री पदमा पद पाए। आद अनंत का तदवेक सो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन अनात्मा बदाग दुख छिद्र छह है। लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सुख न भोग न बह देह विहीन स्नेह सभूतन नेह विरक्त गेह अच्छ है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्रीपद मापत है। रोकंते अर सोकंते जल जोकंते बहुभात बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत ऊतन एक राग न पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न भेट न पावे और की बात कहा कह तू सौ सौ पेट ही के पट बीच बचावे। जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा काश पताल रसातल जाछ भुजंग सब है सिर न्यावे। पाय सके नहीं बार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानन से रम नारिक से सब हूँ मिल गायो भेद कते बन भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो ध्यान धरो दह को मन मै जह को मितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सभ बचहारे भेद न पाय सक्यो अनभेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाद अवेख अदवेख जप्यो तिन्हि गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरे कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे विन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के दिवैया महामान के बटैया अवसान के दिवैया हैं कटैया जम जाल हैं। जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ तिलंगी पहचाने धर्म दाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रुहेले मांग देश के मंगेले बीर बंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है।
गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस न्यावे ते बते थे आए दुख देह के दलत है जिने तोहे ध्यायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन दाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग थान को अभेष कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहु पे नदीन साधा दीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत है चिट्टी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है करते हैं विचार पैना पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूर्ण अवतार निराधार है न पार वार पाइये न पार पै अपार के बखानिये अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानिए जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानिये तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है शुद्धता को खर है सिद्धता की सार है कामना की खान है साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को हूप है के रूप हूँ के रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को बहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को गुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हो के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है जो को हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार वार हूँ को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमाल गावे हसी हल विध्यावे पूर्वी न पार पावे असत अनाश है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है दरैया ध्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरावध छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसे छप काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिहारू महीरा सिंह सैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसासी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिरंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भखरी गंधारी गोर कखरी गर्दे जचारी बौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूर्व पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र तेता पिनाथ कीरत।

0: लेकिन वह बंदर जिहड़ा जिहनूं आपां ने जिथों ना ढाल कढ़ाउणी है वह बंदर नहीं आया। देखो सतगुरु महाराज की है कौतक करके, सतगुरु महाराज जी कहण लगे कोई नहीं सिंगा भाई तू फिकर ना कर, उहने कहा नहीं महाराज लगदा वह बंदर जिहड़ा नहीं आउण वाला है, इस करके मैनूं फिर तो आग्या दित्ती जावे, मैं बंदूक चला करके ओनू मार दवांगा, जो मर गया ढाल मेरी आ जाएगी।
1: बहुर ढाई कर लै हाँ ढाल
0: आज करके सतगुरु महाराज मैं अपनी

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬੜਲਾ ਆਖਰ ਸਨ ਬੜਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਾ ਲੀਖਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਖਾਲਨ ਬੁਲਾਏ ਨ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਨ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਰਾ ਹਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਰਾ ਸਰ ਹਾਰੀ ਮਿਲ ਸਰ ਸਮਾਨੀ ਮਿਲ ਸਰਬ ਕੀ ਮਨਤ ਮਿਲ ਸਰਬ ਕੀ ਮੀਰ ਮਤਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਸਰਬ
1: ਕਰਨ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ
1: सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरन काल का त्रास नवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जूं करी यह रच्छा, राख लिहो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकण को सब गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जा बुध करख करा कर तारा प्रजा धर तब देहे अपारा जब आ करख करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा ताको कर पाहन अनमानत महा मूड कश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदास नरंकार का छीनत नह भिव आप आपनी बुद है जेती बरंत भिन भिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेर जसे तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा है बैठा काहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तपाता सकल मलेच्छ करो रनघाता जे अस दुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छै सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फांस ते ताही उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ द लेहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सुहाई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलभिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता श्री अलदुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावे सोई दुख नात सह व्यापत कोई अडल सुनै गुंग जो याहे सो रस ना पावई सुनै

चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपई मन अग्न सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हू नह ध्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दऊ चले राख आप मुहे और ना दले तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारू हमरे।

चित तम धरो अब रीज के देहो वह हम को जहां बिनती कर जोर करो जब आओ कि औद निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद बिचारे देह अनत नानत रह जस नाव चढ़ भव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताक त्वार भारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बा सुरग भर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत की ए फल हुई आद ब्या छुए सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुखदावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तर सतद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते कूँ आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्रीयस पान कृपा तुम रिकर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गयो।

हे मालक ऐसी कृपा कर दियो दिन रात असी आप जी दे गुण गाते रहिए। सतगुर आयो शरण तुहारी, गुरु की शरण के आन नाल धन गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह बचन करते ने किन्ने मिले सुख, किन्ने बंदे नूं सुख मिलता है। वो सुख कितों प्राप्त होंदा है? जब गुरु साहब के चरणों में आईदा है तां सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख बड़भागी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सिखां दी झोली दे विच कृपा करके गरीब नवाज नाम रूपी धन पाउंदे ने। जद उस नाम का सिख अभ्यास करता है तां महाराज बचन करदे ने मिले सुख, उहदे विचों फिर सुख प्राप्त होंदे ने। मिले सुख नाम हर सोभा, फिर सोभा मिलदी है क्यों? सच्चे दे सच्चे मार्ग दे उत्ते चलण दे नाल महाराज साहिब कहिंदे सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करहै जहान, कहिंदे फिर दुनिया सिफत करदी है, महिमा करदी है। तीसरा वचन पातशाह कहिंदे जिथे सुख मिलदा है सोभा मिलदी है। तीजा वचन चिंता लाहे हमारी, जद गुरु साहब के चरणों में जद सच्चे पातशाह के चरणों के विच आके अपना जीवन समर्पित कर दीए, जद गुरु साहब नूं भेट कर दीए अपना आप और सतगुरु के बख्शे नाम का अभ्यास करिए, तां महाराज कहिंदे उस नाम के अभ्यास द्वारा एक वड्डी बख्शिश वापरदी है। चिंता लाहे हमारी, कि बंदे की जिहड़ी चिंता है ये दूर होंदी है, मन दे विच एक भरोसा बनता है। नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, रोज पढ़ने सोदर दे विच काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक अगे कर तरिया। कै मना मूर्खा क्यों चिंता करता है? उस मालक ने पत्थरां दे विच जो जी जंत पैदा किए हुए ने मालक ने उन्हां दा रिजक भी उन्हां दे अगे तरिया होया है, तां फिर तैनूं क्यों ना देगा? कहिंदी जिवें जिवें उहदा नाम दा अभ्यास बाणी दा अभ्यास होएगा फिर जीवन दे विच बदलाव आएगा, जीवन दे विच एक भरोसा बनेगा। ओ की

0: तेनू क्यों ना पाले बंदिया।
1: महाराज कहने जेड़ा पत्थरां विच कीड़ियां नू पालदा है किन्ने भरोसा रख तेनू क्यों नहीं पालेगा। सत्कारयोग महापुरख श्रीमान संत बाबा कुलवंत सिंह जी महापुरख आपां नू असीसां बख्श के गए ने, रोम रोम कोट कोट शुकराना जो साध संगत उन्होंने आपां नू निवाजिया। पहली दफा जद असीं आए ना आपां सारे दर्शन करन आए हां, पिछले दो साल पहला पहली वारी आए, मन विच बड़ा सी वी आपां ना कीर्तन दी हाजरी भरांगे, गुरु साहब दे चरणां च आपां बैठे हां सारे। तो मैं सोचा भी आपां किनूं बेनती करांगे, किस तरह आपां कीर्तन दी सेवा लवांगे। असीं सारे जदों जाके बाबा जी दे चरणां विच फतेह गजाई, नमस्कार कीती, ते पहला बचन कहिंदे कीर्तन दी हाजरी भरी कि नहीं। असीं कहा जी अज ही आए, कोल महापुरखां दे गड़बई सन और श्रीमान सिंह साहब संत बाबा राम सिंह जी, कहिंदे कीर्तन दी हाजरी भरवाओ, किन्ने दिन रहोगे। मैं कहा जी पांच चार, कहिंदे पांच चार नौ हो गए। फिर महाराज ने ग्यारह दिन सेवा ली। सो पहले ही जड़ा फुरना सी, पहले दिन ही महाराज ने दो तीन दिन रात दे दीवाना दी सेवा उदों बख्शिश की। सो साध संगत गुरु दे चरणा दे विच आउण नाल सुख मिलता है, शोभा मिलती है। चिंता लाहे हमारी, कहिंदे जिहड़ी चिंता है ये दूर होंदी है गुरु दे चरणा दे विच, गुरु दी शरण दे विच आया। साध संगत हुशियारपुर इलाके दे रहण वाले भाई तीर्था जी हर साल दो बार साल विच सखी सरवर दे संग लैके जाया करदे सी। दो बार सुख कित्थों मिलिया, आनंद कित्थों मिलिया, जद गुरु साहब दे चरणा दे विच आ गए। भाई लहणा साहब जी सारी सारी रात पैरां दे विच झांजरां पा के घुंगरू बन के नचदे रहिंदे। सुख कित्थों मिलिया, जद गुरु साहब दे चरणा दे विच आ गए तां गुरु दा रूप ही हो गया। धन सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज जी तीर्थ यात्रावां करिया करदे, 62 साल दी उम्र दे विच धन गुरु अंगद साहिब महाराज के चरणों के आए, 11 साल गागर ढोई, दिन रात सेवा की। साध संगत जी फिर आप पढ़ते हैं, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तुहे बन आवे। धन गुरु रामदास साहिब महाराज जी ने भी बेशक गुरु के दर के जवाई ने, पर मन में नहीं रखिया, सेवकी भाव रखिया, टोकरी ओवें ही ढोंदे रहे। ते साध संगत फिर एक दिन बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु अखा वह गुरु दे दर दे उते आ के माण सोभा किन्ने एडी वड्डी बख्शिश वरतदी है। अज भी जे गुरु दे चरणा नाल साडी प्रीत बन जाए, किन्ने गुरु साहब की करदे है, जे कोई गुरु साहब की बाणी पढ़न लग जाए, नाम जपन लग जाए, उदे मार्ग दे उत्ते चल जाए, तां कहिंदे कि ये गुरबाणी सानू दुनियावी सुख यही आनंद दिंदी। कहिंदे नहीं, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। कहिंदे ये सतगुरु की बाणी ऐसी महाराज की कृपा वापरदी है, जिहड़ा जीव ये बाणी नू पढ़न लग जांदा है, जिवें हमायूं पंछी दे आपां पुरातन कथा सुणदे हां कि हमायूं पंछी दे खंभां दे विच इह इक गुण है, उहदे खंभां नाल जो बन्नोगे उहनूं उड़ा के पंछी तक लै जांदे आ। इसे तरह कहिंदे सच्चे पातशाह दी जिहड़ी बाणी है, जद जीव बाणी नूं पढ़न लग जाए ते इह बाणी धुरधर गाहों है, निरंकार दी है, ते इह बाणी साडी सुरत नूं निरंकार दे देश लै जांदी है। अख सतनाम सिद्धी भाषा विच कहिए तां गुरु गुरु करन वाला एक दिन गुरु दा ही रूप हो जांदा है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जदों लाहौर गए ना गरीब नवाज, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਪੁੱਤ, ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ,

तन के अंतर की जान तपले बुरे की, अंदर का जो भाव है वह गुरु साहब जान देते। कहिंदे एक दिन फिर सच्चे पातशाह ने आवाज मार के बुला लिया, कहिंदे भाई रोज आने मन का भाव मन में लैके ही चले जाते। कहिंदे सतगुरु कहण की हिम्मत नहीं पैंदी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह दे अगे हाथ जुड़े हुए है, चरण फड़ के कहिंदे सच्चे पातशाह एक कृपा कर दिओ। गरीब नवाज महाराज एक मेहर वरता दिओ की

हर धर्म से आतरा तरा चल के रहा जात में जो जो तुम्हें जाता कल करा पर पुरया तू सचा सारे सिख सारे जिनकी दिशा

पौड़ी पड़िया होवे गुनेगार तो मैं साधना मारिए जे अकाल करना ते ना पचारिए ऐसी कलाना खेडिए जिधर के गारिए पड़िया ते हो मैं आप चार के बिचारिए मोह चले सो अगे मारिए मोह चले सो अगे मारिए।